0: प्रोडक्टहरु कोकोनट, चोकोनट, भिटा मिल्क, बटर प्राइड, क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिभ होल विथ बिस्किट।
1: हेर हेर हेर यो हो हाम्रो चोइस, कोदोको डाइजेस्टिभ र कुकी छ है नाइस।
0: अड्गुरी।

राज्य को एंट्री भएपछि डांस फ्लोर सब खाली छोड़ देऊ नाच्ने हरूसँगै नाचौ न नाच्ने ले ताली ठोक देऊ आफ्नै मन को मालिक म दुनिया को किन सुनु डीजे यही म्यूजिक बजा जब सम्म म चेंज न भन नाच न फिल गास भई सराई चट्टै खाई सब सुख पीड़ा लाई फुल स्टप लगाए अरे बच्चा हो तिमी बच्चा ठुलो स्वर ले न बोल मिस्टर आरजे को हो भन्छौ घर गएर टीवी खोला।

0: क्या होगा, बोलो बोलो तो क्या होगा।
1: तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा
0: तो क्या होगा, बोलो बोलो तो क्या होगा।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए
1: मध्य पश्चिम ट्रान चेक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

राम राम सन्झ्याक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। कोइलाबास भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2082-83 लक्ष्य से धिर राजस्व संकलन कर सफल हो रहल दाङको एक ठोकेल भन्सार नाका कोइलाबास भन्सार कार्यालयले लक्ष्य से धिर 17.41% बढ़ी राजस्व संकलन कर लखो। भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2082-83 1,74,36,000 राजस्व संकलन कर लक्ष्य 2,04,71,467 रूपया राजस्व संकलन करलक। कोइलाबास भन्सार कार्यालय प्रमुख लोक बहादुर विष्ट से जानकारी दे रखल आर्थिक वर्ष 2082-83 शुरूआती महीना में लक्ष्य से कम राजस्व संकलन करलक हुईलसे फे गत वैशाख इंहर भरी कोइलाबास भन्सार कार्यालय से उल्लेख्य मात्रा में राजस्व संकलन कर सफल हुईलक कार्यालय प्रमुख विष्ट से जानकारी दे रखल। भारत से नेपाल प्रवेश कर रहा सवारी साधन से उकुछु खाद्यान्न लगायत का अन्य सामग्री से राजस्व संकलन हुई करलक भन्सार कार्यालय जना राखल। भारत से कोइलाबास क्षेत्र संग कोइलाबास में रलक राम जानकी मंदिर प्युठान का स्वर्गद्वारी मंदिर दांग का चौघेरा मंदिर लगायत का धार्मिक स्थल में पूजा पाठ तथा घुमफिर का लाख ऐना भारतीय नागरिक से प्रयोग करना सवारी साधन से राजस्व संकलन बड़ी संकलन हुईना करलक कार्यालय जना राखल। कौनो समय व्यापार व्यवसाय धीर हुईना नाका का पहचान बनीलक। कोइलाबास पाछक समय भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रना प्रमुख नाका बनक तथ्यांक देखा राखल। सहज सड़क संजाल हुईलसेफे संचालन कला सरकारी निकाय से प्रभावकारी प्रयास हुई सकल निहो कल से निजी क्षेत्र से कुछ प्रयास शुरू कर लसके इससे सार्थकता पाई स्याकल्ने हो। हरेक निर्वाचन का समय में ई नाका का विकास करना सबको राजनैतिक दल का नेतृत्व से बटिल सके एकर कार्यान्वयन कला का ठोस पहल हुई स्याकल्ने हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङसे सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न हो रहल। सेवाग्राहीको अत्यधिक चापन ध्यानमा धर्ती कार्यालयले आगामी साउन 9-10 गते शनिबार ओ आइतबार फे सेवा दिन जना राखल। कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको शुरूआती दिनसे जो राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता विवरण संशोधन तथा परिचय पत्र कार्ड वितरण कला सेवाग्राहीको भीड बढ़ल बा। सेवाग्राही हुन सहज हो छिटो छरितो सेवा प्रदान करने उद्देश्य से और व्यवस्था निहित समकलाक सार्वजनिक विदा का दिन मफे सेवा संचालन कर लागिलक। जिला प्रशासन कार्यालय का प्रशासकीय अधिकृत विजय गौतम से जानकारी दे रखल। जारी सूचना अनुसार शनिवार व आइतबार सार्वजनिक विदा का दिन बिहान 9 बजे से संध्या 5 बजे समय टोकन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह कर जिनेवा। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गोताखोर तथा विपद व्यवस्थापन टोलीले गत वैशाख से असार मसान्त सम्मको 3 महीनाको अवधिमा विपद तथा दुर्घटनामा पर्लक 347 जना नागरिकको सकुशल उद्धार गरिराखल। सशस्त्र प्रहरीको अनुसार ऊ अवधिमा नदी ताल तथा कहरे खोल्लोमा डुप्लक ओ पुहिलक 211 ठो घटना से 86 जनाको जीवित उद्धार करगिल बाकलसे मृत्यु हुईलक 122 जनाको शव निकाल गिल्बा उस्तक बाढ़ी डुबान तथा कटानको जोखिममा पर्लक 239 जनाहन सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण करगिल्बा। देशका विभिन्न भागमा हुईलक सड़क दुर्घटना से 6 जनाको तत्काल सकुशल उद्धार करगिलक ओ 807 जना घाइते हुन उपचार कलाक अस्पताल पठागिल्बा। हावाहुरीमा पर्लक 12 जना ओ पहाड़ी क्षेत्रमा गैलक पहिरोमा पर्कन 4 जनाको जीवित उद्धार करगिल्बा। सशस्त्र प्रहरी से देशभरका 226 स्थानमा हुईलक आगलागी नियन्त्रणमा लेती आगलागीमा पर्लक 4 जनाको समेत सकुशल उद्धार करलक जना राखल। जटिल प्रकृतिको जल विपदको 31 ठो घटनामा गोताखोर टोलीले 3 जनाको सकुशल उद्धार करलबा कलसे 14 जनाको शव फेला पारलबा। विपद जोखिम न्यूनीकरण क्लाक सशस्त्र प्रहरी से 464 ठो विद्यालय 541 ठो क्लब ओ सामुदायिक स्तरमा जनचेतना कक्षा संचालन करलबा। 47,681 जनसहभागी हुलक उसक पूर्व तयारी क्लाक 129 ठो कृत्रिम घटना अभ्यास समेत करागिल्बा। उसक समुदाय स्तरमा दक्ष जनशक्ति तयार पार 47,040 ठो तालिम से 353 महिला ओ 731 पुरूष गईकन 1,084 जन नागरिक विपद स्वयंसेवक रूपमा तयार पारलबाट।
ओ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड से आर्थिक वर्ष 2082-83 में आगक आर्थिक वर्ष 82-83 पुष महीनासम्म स्वीकृत स्वास्थ्य बीमा दावी बाफत 25,48,87,479 भुक्तानी करलग जना राखल। बोर्ड से आर्थिक वर्ष 2082-83 में असोज कार्तिक मंगसिरसम्म प्राप्त दावी मध्य स्वीकृत दावी का भुक्तानी यही से अगाड़ी सम्पन्न करगिल रह। पाछक निर्णय अनुसार 2082 पुष महीना का स्वीकृत हुलक दावी का रकम 2,04,43,07,769 सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था का बैंक खाता में जमा कर गिलक हो। यह संग आर्थिक वर्ष 2082-83 अंतर्गत पुष महीना सम्म का स्वीकृत दावी का भुगतानी संपन्न हुईलक बोर्ड जनाइलक जना राखल। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड से सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थान दावी भुगतानी नियमित पारदर्शी ओ चरणबद्ध रूप में अघारी बढ़ागिलक जना राखल। कुइठा ताजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजाफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग मैशालिक राम चौधरी विदाहीटू रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फैट क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोकोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।